कार्यक्रम विश्वासको वचन सुन्न नभुल्नुहोला। प्रत्येक आइतबार साँझ 6 बजेदेखि 36 सम्म र पुनः प्रसारण शनिबार साँझ 6 बजेदेखि 36 सम्म पास्टर अनिल सुनामको साथमा।

0: आज ही निना दी गुदु निच्छिया आत्मिकी ज्याजो स्पार्क माई फेथ जुगु विश्वास के चमक हया बिउ प्रार्थना अडिक जुया दिसम जय मसी जोजलपाजे अमृता महर्जन स्पार्क माई फेथ यु जीवन या छेन्ड श्रृङ्खला भाग 32 के छिसक सित न लसकु छ यकु ख्रिस्टेन्टेस याइगु छगु गल्ती दैगु इम्स छुछु खया नीति जक्क प्रार्थना याइगु ख अले इम्स या इमगु प्रार्थना या तुरुन्त लिस मखने भले इम्स प्रार्थना या तोती परमेश्वर न्याब्ले झिगु प्रार्थना लिस तुरुन्त बिमखु उखिया अर्थ परमेश्वर झिगु ख मता दैगु मखु थुकिया अर्थ झिस प्रार्थना याना चुनेमा दैगु ख छिगु प्रार्थना या लिस मव तले प्रार्थना याइगु गुब्लेन ढिके मते यो पिन्यानुमेपी जी सुयागु नीति प्रार्थना यानु वो उपी तत्काल वो चमत्कारी रूप लागे धुङ कुगु विशेष क्षेण न दु अथे जुई भले थो तस्क अजु चापुगु व गौरवशाली जुई तर यकु यी सुयागु नीति प्रार्थना याई बोले थथे जुई अले तुरुन्त हे छु मजु थे जुई अथे सा उगु अवस्था जी छु या माली जी व मनुते त ध्या मालिला जित क्षमा याना दिस तर थौ झिगु प्रार्थना परमेश्वर मता अवश्य नमखो उगु अवस्था जी छु या मा धासा उम मनुया आवश्यकता या नीति विश्वासपूर्वक व मौन रूपमा परमेश्वर के प्रार्थना याना चुनेगु ख कलसी छगु अध्याय गुगु पद के धातगुदु थोख न्यसानी से पवित्र आत्मा यु बुद्धि छिमके परमप्रभु यागु इच्छा बालक सिके थुके फेमा तका चिम्स प्रार्थना याना चुनु गुदु थन प्रार्थना या प्रतिबद्धता या त ध्यान ब्यादिस थो मधा जिगु जी छिगु नीति जक्क प्रार्थना या अले जी मेगु छु ख न्यने उने बरु व धान जिम्स छिमगु नीति प्रार्थना याय त तोता गु मधु जीवन या छुन अझ पुगे त अडिकता छगु महत्वपूर्ण ख अले विशेष याना झिगु जीवन या नीति परमेश्वर पाखे छु आशा याइगु धैगु ख वै बले झिगु उगु खया बारे प्रार्थना यामा अले गुली अप्प आवश्यकता जुई उली हे उगु विशेष खया नीति झिस प्रार्थना ध्यान व कुत यामा यो पिन्यनुमेपी आज प्रार्थना या विषय के दु थो थुके मागुदु कि गुब्ले गुब्ले परमेश्वर झिगु प्रार्थना या लिस मब्युसा झिस गलत ख फनाचुन गुजुइफु झिस थुके माकी झिगु स्वया परमेश्वर या बुद्धि युक्कु हे त नापाङ्गु कोरन्थी छगु अध्याय निङ्यागु पत्के धाटगुदु झिगु जीवने नापाङ्गु कोरन्थी छगु अध्याय निङ्यागु पत्के धाटगुदु परमेश्वर याको मूर्ख ख मनुतेगु ज्ञान स्वया तहत अले परमेश्वर याको कमजोरी मनुतेगु बल स्वया तस्क बल्ला झिगु जीवने मागु वस्तु या परिणाम मखनी बोले झिस झिगु इनापा या त मूल्याङ्कन न्यायमा परमेश्वर झिगु नीति मागु प्याछिगु ख झिस फुनाचुनगु खला सम्भव दुखी झिस छु विशिष्ट ख फुनाचुनगु जुइफु तर परमेश्वर झिगु नीति यक्कु बालागु मेगु छु दुधका स्युगु जुइफु अथे कि यदि छि बिहा मजुसा छि छम निश्चित मनु या त मतिना याना यी पा याय त परमेश्वर प्रार्थना याना चोङ्गुदु दुसा छि लक्षित याना चोम मनु स्वयान बालाम मनु या त इपा याएर परमेश्वर मने तया त गुजुइफु थो जुइफु कि छिगु निश्चित ज्याया नीति परमेश्वर प्रार्थना याना चोङ्गुदु अले परमेश्वर के छिगु नीति मेगु ज्यादु गुब्ले गुब्ले झिस परमेश्वर या न्योने थ त विनम्र यामा अले झि त छुमा धका वेकल स्यु धका थुइकेमा अले झिस बिचा यानागु स्वया तस्क हे फरक ख धका थुइकेमा एफिसी खुगु अध्याय यो झिन्च्यागु पत्के ताटगुदु न्याब्ले छिम्स पवित्र आत्मा यागु शक्तिका प्रार्थना या अले परमेश्वर यागु ग्वाहारी फु होसियारजु अले न्याक्षसा चोपी विश्वासी तेगु नीति मत्तिक प्रार्थना या यो पिन्यनुमेपी प्रार्थना धैगु तस्क शक्तिशाली व अझ चाहे पुगु ज्याबख गुगु परमेश्वर झित ब्यादि गुख गुकियाना झिस वेक चाहे जुगु फुक्क प्राप्त या फै तर थुपी प्राप्त याए टिस छु प्रार्थना या नाचुना धैगु ख स्पष्ट जुइमा अले झिगु प्रार्थना या लिस मवतले झिस गब्लेन हार स्वीकार याए मजु थौयागु वचन या नादिगुने छि सकसित न परमेश्वर सुब्याबीमा जय मसी नेनामिपी छिम्स नकतिनी हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षक व आत्मिकी लपु केनादिम सोमन भिक्टर चोयादिगो हसना झिगु हे नेपाल भाषा या रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर 2 98 68 55 33 39 98 68 55 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसी
1: मेरो प्रश्न चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई माननीय मन्त्रीज्यू सरकारले नीति बनाउँदा युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा के सोच्नु भएको छ
2: मेरो प्रश्न सांसदज्यूलाई हजुर भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुभयो सुरुमा त बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना छ अस्ति चुनावमा त तपाईँले धारा बत्ती बाटो बनाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो तर संसद त नीति बनाउने थलो हो नि सांसदज्यू तपाईँले जनतालाई दिएको आश्वासन अब कसरी पुरा गर्नुहुन्छ अनि अब बन्ने नीतिमा चाहिँ म जस्ता युवाको सहभागिता कसरी गराउने सोच्नु भएको छ
3: मेरो प्रश्न मेयर साहबलाई अहिले स्थानीय सरकारले गर्ने काममा लैङ्गिक संवेदनशीलता र युवा सहभागिताको बारेमा कसरी सोच्नु भएको छ
4: मेरो प्रश्न मन्त्री र सांसदज्यू दुवैजनालाई अहिले सुशासनको सवालमा युवाको सहभागिता विषयमा कसरी सोच्नु भएको छ
5: सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म नीतिदेखि विकाससम्म विपद जोखिम न्यूनीकरणदेखि सुशासनसम्म युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताबारे प्रश्न गरौँ तपाईँको एउटा प्रश्नले नीति बदलिने र सुशासन कायम हुनेछ
6: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड